तेरे दर्शन को हम बारे। आप जी दी पवित्र बाणी विचों ए शब्द किवें अकाल पुरख तो सड़के जा रहे, किवें बलिहार जा रहे हैं।

चल के विखाया। जे आप जी ने लिखिया है जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, जैसा अमृत तैसी बिख खाटी, जैसा मान तैसा अपमान, जैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिया जीवन मुगत। संसार विच ऐसा होके विचरना बड़ा मुश्किल है कि जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, सोने नू और मिट्टी नू एक समान समझना, मान और अपमान नू एक समान समझना बड़ा मुश्किल है, अमृत और जहर नू एक समान समझना कोई मखौल दी गल नहीं। पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने एक एक अखर ते चल के विखाया। साई मिया मीर जो समय दे पूर्ण पुरुष सन, जिन्हां ने श्री हरिमंदर साहब की नींह रखी सी, जद ए सुखमनी साहब जी की पवित्र बाणी सुनी तां बेनती कीती, गरीब निवाज कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी संसार विच है भी सही जेड़ा सोने ते मिट्टी नू एक समान समझे, अमृत और जहर नू एक समान समझे, मान और अपमान नू एक समान समझे, कोई है भी सही ऐसा मनुख? तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, मियां मीर जी समा आवेगा तुहानू आपे ही पता लग जाएगा भाई ऐसा मनुख है जां नहीं। ते जदों समा आया धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी तती तवी ते बैठे हन, किथे आप दा पवित्र शरीर मखमलिया और सोहनिया सेजावां ते बैठदा सी, मखमली गद्दियां ते बैठदा सी शरीर, हजारां प्यार वाले श्रद्धालु गुरु के सिख फुलां दी वरखा करदे सन, सैकड़े गलां विच हार पाउंदे सन, सिर ते छतर अते चौर झूलदे सन, किथे इतना सत्कार ते किथे अज धन गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती तवी ते बैठे हन, अग बल रही है ते चौर दी थां ते गर्म रेते दे कड़शे साहिब जी दे शीश विच पाए जा रहे हन, ते गुरु अर्जन देव पातशाह फिर भी मुस्करा रहे हन, चेहरे ते कोई आभा है, ओही नूर है जो सशोभत मखमली गद्दियां ते बैठ के वेख्या सी, अज ओही नूर ओही आभा अज गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे चेहरे ते देख के साईं मियां मीर जी दे नैन कटोरे भर आए। गरीब निवाज एक ही कौतक है, आप समर्थ पुरख हो, आप चाहो ता एक अख दे फोर विच धरती नूं पुठियां कर सकदे हो, एडी समर्था दे मालक हुंदिआं भी आप इतना कष्ट सहार रहे हो, उच्चारण करो श्री। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, साईं मियां मीर ओ बचन चेते करो, कदे तुसी पुछया सी कि कोई ऐसा पुरख है जो मान और अपमान नू एक समान समझे, सोने और मिट्टी नू एक समान समझे, अमृत और जहर नू एक समान समझे। क्या गरीब निवाज आप जी ने एक एक अखर ते चल के दस्या, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप दा शरीर तत्ती तवी ते बैठा होवे, सारी प्रकृति सारे आप दे हुकम विच खड़ोते होन, ए पातशाही तो क्या है, लोक परलोक दे आप पातशाह होंदे होए भी इतना कष्ट सहार रहे हो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, मियां मीर
इस चम दे नाल प्रीति क्या करनी है, प्रीति चम शो क्या किया। जे प्रीति करनी है ता अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दे नाल प्रीति कर। इस चमड़े दे नाल क्या प्रीति करनी है, ए ता एक दिन मिट्टी हो ही जाना है। तन तप रहा हम शांत हैं हरि नाम से। गुरु अर्जन देव पातशाह कह रहे जे साडा तन तप रहा है गर्म रेते दे करशे पै के तत्ती तवी ते, तो कोई गल नहीं की होया। क्योंकि आपने लिखिया सी तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाए। ते ओही कौतक करके आप विखारे सन, आख्या मिया मीर तन तप रहा हम शांत है हरि नाम स्यों। जे तन तप रहे तो की होया, नाम जप के साडी आत्मा साडा मन तो शांत है ना। प्रीति चाम स्यों क्या हुआ। मिया मीर ने सेजल नेत्रां दे नाल आख्या हे गरीब निवाज, मैं ए दुख सहार नहीं सकदा। गर मुझ को हुक्म दीजे जालम को जान से मारू। जे तुसी नहीं कोई शक्ति विखाउंदे तां मेरे विच समर्था है। जे आप कृपा करो मैनू हुक्म करो तां मुझ को हुक्म दीजे जालम को जान से मारू। अर उनकी सा रग पर रख दूं अभी दो धारा। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी ने ओ शांत स्वरूप, ओ बाणी दे बोध, ओ नाम दी मूरत गुरु अर्जन देव पातशाह सुनते ही सतगुरु ने शांति का कुल्फ खोला। पाना ही पाना कह कर जलते हुए को ठारा। आख्या भाई असी पाना मनना है और पाना मन के दसना है, अगों किस तरह सेवक मनंगे जी। मैं आप नहीं मनांगा, उच्चारण करो श्री। मियां मीर ने आख्या गरीब निवाज, मैं ए वेख नहीं सकदा के आप दे रोम रोम विच छाले पै चुके हो। ऐसा दुख तां गुरु अर्जन देव पातशाह मुस्कुरा के कहन लगे, मियां मीर जितने जिस्म पे पड़ेंगे शाले, जितने जिस्म पे पड़ेंगे शाले उतने सिख होंगे सिदक वाले, उतने ही प्यार वाले सेवक होंगे भाई। इसलिए असली पाना मन के दसना है। आज जिस तरह पतंगा आके शमा तो कुर्बान हो जाता है, जे सेवक अपने मालिक तो कुर्बान नहीं होया तो सेवक कदा होया। उच्चारण करो श्री। इसलिए हजूर बख्शिश कर दिया ने, हे वाहेगुरु तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शना तो मैं बलिहार जाता हां, सदके जाता हां और यही दात।

प्रभु परमेश्वर दा नाम जपया करो, हर वेले नाम ही सिमरिया करो और परमात्मा दा नाम अमृत पींदे रहा करो। साई फरमाउंदे हन कि इस नाम दी किसनू प्राप्ति हुंदी है,

सिप सवय करके और सात समुद्र की मत कहो। काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बने हो। सार सुता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो।

0: तुमको प्रभु ने कर जय हो।
1: बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न करो भैया कूट अपराध हमारे कंधो
0: कूट अपराध हमारे कंधो अनक विधि समझाओ
1: अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरत रखाओ तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुमरी

दुष्ट दमन तू संसार तेजा। कहंदे ने मेरा मन नहीं करदा तेरे चरणा तो, पर हुक्म भी मनना है, पर बार बार कह रहे ने मेरा दिल नहीं करदा किसी होर दी ड्यूटी लाओ। प्यार नाल सत्कार नाल किसी जोर जबरदस्ती नाल नहीं, थापड़े दे दे के जिवें प्यो पुत्र नूं समझांदे बच्चे नूं आखदे कि मेरे पातशाह जी दे की वाक हन, आप फरमांदे न आओ चलिए श्री हेमकुंड साहब जिथे मेरे कलगीधर पातशाह जी परमात्मा निरंकार नूं जवाब दे रहे ते की आखदे ने।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा माणा ने माणे तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

तो दिल दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो तो दिल दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना तो प्रभु जी पास सब कुछ किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जी दे वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई।

कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हरन जन को प्रभु अपने का तान जन को प्रभु अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी हा मसलत परवा चरण शरण हम अनाथ ना फर्कन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पर परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी

संसार दा आना जाना तो बने पर इस आउन तो बाद जान दे समय नवेड़ा सच ते होना है। सदा रहने वाले वाहिगुरु अकाल पुरख असी रोज पढ़ने कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसार क्योंकि रहना जो नहीं जेड़ा आज है कल नहीं होगा जो आज तो 100-200 वरे पहला सी ओदे बारे पढ़ते सुनते हैं कदे यकीन आता कदे नहीं आता और बहुत कुछ ऐसा भी है जिदे बारे लिखिया भी नहीं गया असी कुछ सुनते भी नहीं कुछ कह भी नहीं सकते बहुत कुछ संसार ते ऐसा ही होया जिदी कोई निशानी बाकी नहीं है जिदी निशानी भी कोई नहीं जिक्र भी कोई नहीं उन्हूं सच कवे कहोगे और होर चार दिन जेड़ियां निशानियां साडे कोल पिछले इतिहास दियां कायम ने हो सकदा ना रहन आउण वाला युग जिस वेले असी गल्लां करिए कहन ए झूठ है ए मनन विच नहीं आउंदा जो कल सी अज झूठ हो गया जो अज है कल झूठ हो जाएगा ओदे बारे धन गुरु नानक कहिंदे ने कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ पैसन हार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए फार कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करदार गलत हो गया काम कूड़ नाल मोह पा लिया कूड़ नाल नेह पा लिया जो रहन वाला सच सी ओदी संभाल ना कीती ओनू चेते ना कीता विसरिया करदार महाराज सचेत कराउंदे ने किस नाल की चाहे दोस्ती जो तुर गया ओदे नाल दोस्ती कि जो रहना है जो है मौजूद है जिसने अगे भी रहना है ओदे नाल प्यार के जो तुर

बिन घोर अंधा गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पार गुर कर शब्द विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सुपन अघन करते सब तेरे गुर नैन पैन गुर गुर करो गुर नैन पैन गुर गुर करो गुरु सत्य कव नल कहे गुरु सत्य कव नल कहे जिन गुरु न देखो न कियो अगर आप

जिथे दुख विच है गुणवान वे दुखी है, हर विद्वान सुखी ना हो सकिया। बीमार ते दुख विच है ही, पर तंदुरुस्त भी दुखी है। हर एक दी चाहे

आप संगत में बैठे हैं। यहाँ का रंग अपना है, कहीं जुआ चल रही है उसका अपना रंग है, कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए। झपट पड़ता इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहाँ जहाँ पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे हुए।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी, कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे। ये पहल तू करनी है। प्यार असां देना है, लैणा नहीं। देवे तां ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाईए? ना भाई, वह नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी, भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया एक कोई पुकार है, केड़ी

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहूं भय किन्नर पिसाच कहूं प्रेत हो कहूं होय के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत कतहूं

देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

सूरज में सस में नब में जय हेरो तहां चित लाए तहाई। पावक में अर पवन हूं मैं पृथ्वी तल में सो कहां न जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही।

दिल्ली के दिलवाले तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावारिया। रोके रुगेले मग देश के मंगेले भी बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालिते हैं। गोखा गुन गावे गोखा गुन गावे गुन गावे।

तिन पूर्ण प्रताप पाय सर्वतन ताम फल फूल को फलते हैं तेरा अंत न पारा बारिया तेरा अंत

हर के गुण अगम आगा हम क्यों कर जपो आणिया हरे तुम बड अगम अगा तेरा तेर तेरा

0: आन बहुत मिल बैठत। जदों सुखां दे साधन होंदे हन, चार पैसे पले होन मनुख दे, ता बहुत लोग रिश्तेदार सज्जन मित्र आके घेरते हैं। रहस चौहू दिश घेरै, हर एक मनुख चाहुंदा भी मैं इस दी प्रसन्नता लवां। ते जदों धन दौलत पदार्थ मुक जांदे हन, ता फिर विपत परी सब ही संग छाड़त। कोई दुख आ लगे, मुसीबत पै जाए, धन दौलत चले जान, ते फिर रिश्तेदार भी मुख मोड़ जांदे हन, सज्जन मित्र भी मुख मोड़ जांदे हन। बल्कि परों कोई आ रहा होवे वेख लवे, ते पासा वट के पासे चला जांदा वे, किदे कुछ मंग ही ना दवे। उचारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: इसे लई हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरै, घर की नार बहुत हित जांसो। बड़ा हित होंदा है मनुख चंगे तो चंगी वस्तु घर वाली वास्ते लियाउंदा, चंगे तो चंगा वस्त्र। कितने भी कूड़ कुशत गुनाह करने पैन, घरवाली नूं खुश करन लई ए सब कुछ करदा, पर जदों विपता पै जावे तां घरवाली भी मुख मोड़ जांदी है। हजूर दी बाणी कह रही है कि घर की नार बहुत हित जांसो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी ए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ए झूठा व्यवहार झूठियां प्रीतां संसार दियां, हजूर कहंदे ने इथों तक भी नहीं निबदियां, दरगाह विच किथे कोई जाएगा भाई, किथे कोई तेरी सहायता करेगा। जां को मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागो होए दुश्मना, साक भी भज जांदे हन जदों मुश्किल बन जांदी है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं।